0: तो उनसे मुंह फेर लो और इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

0: This is FM 101.
1: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
2: AM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Monday, 6th Muharram ul Haram, 22nd June 2026. This is Radio Pakistan, the news read by Sadia Sattar. First, the headlines. Prime Minister says Iran and the United States are sincere in their efforts and genuinely want peace in the Middle East. Shahbaz Sharif has expressed confidence that Swiss companies would further enhance their investments in Pakistan. Pakistan and Egypt have reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in diverse fields. Two more Palestinians have been martyred in an Israeli drone strike on southern Gaza Strip. World Rainforest Day is being observed today.
0: This is FM 101.
3: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
0: 101 FM. This is FM 101.
4: मौजूद सामिन, आप सुन रहे हैं FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से मुहर्रम उल हराम की खसूसी नशरियात।
5: وصلى الله على نور
6: یہ ہے FM 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ۔ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मुतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बे फॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: This is FM 101.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकनी यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
0: सुनते रहिए FM 101.1।
2: उस वक्त तुम अल्लाह से दुआ मांगोगे तो कबूल न होगी। फिर फरमाया, तुम में से जो शख्स कोई गुनाह का काम होता हुआ देखे तो उसको चाहिए कि अपने हाथ और कुव्वत से उसको रोक दे, और ये भी न कर सके तो कम अज़ कम दिल में इस फ़ैल को बुरा समझे, और ये ईमान का अदना दर्जा है। इन तमाम आयात व अहादीस से ये बात साबित है कि नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना उम्मत के हर फर्द पर वाजिब है, लेकिन हर शख्स पर उसकी इस्तेआत और कुदरत के मुताबिक ये फरीज़ा आयद होता है। और जिस तरह हर शख्स की इस्तेआत व कुदरत मुख्तलिफ होती है, इसी तरह हर काम की इस्तेआत और कुदरत भी जुदा होती है। अव्वल तो ज़रूरी है कि इस शख्स को मारूफ व मुनकर का पूरी तरह और सही सही इल्म हो, क्योंकि जिस शख्स को खुद ही इल्म ना हो और वो अपने जहन के मुताबिक दूसरों को नेकी का हुक्म करने लगे या बुराई से रोके, तो जाहिर है कि इस्लाह की बजाय फसाद होगा, और हो सकता है कि अपनी नावाकफियत के बायस किसी नेक काम करने से मना करने लगे या किसी बुरे काम करने का हुक्म करने लगे। इसलिए इस फरीजे के आयद होने से पहले उस शख्स पर उसका इल्म हासिल करना फ़र्ज है, वरना उसका फ़ैल माशरे की इस्लाह के बजाय खराबी और फसाद का सबब भी बन सकता है। दूसरी बात यह है कि अम्र बिलमारूफ व नहीं अनिल मुनकर का ये फरीज़ा उस वक्त आयद होता है जबकि वह अपने सामने किसी मुनकर को होता हुआ देखे। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु भी अम्र बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अदा करने के लिए निकले थे, जैसा कि उनके खुतबे से ज़ाहिर होता है जो उन्होंने 6 मुहर्रम अल हराम को ख़ास व आम सब को ख़िताब करके इरशाद फरमाया था कि लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो कोई ऐसे हाकिम को देखे जो जुल्म करता है, अल्लाह की कायम की हुई हदें तोड़ता है, अहद व पैमान को तोड़ता है, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है, अल्लाह के बंदों पर गुनाह और सरकशी से हुकूमत करता है, और देखने पर भी न तो अपने अमल से उसकी मुखालफत करता है और न अपने कौल से, तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी को अच्छा ठिकाना नहीं बख्शेगा। देखो, ये लोग शैतान के पैरों बन गए हैं, रहमान से सरकश हो गए हैं, फसाद जाहिर है, हुदूद इलाही मुअत्तल हैं, अल्लाह के हराम को हलाल और हलाल को हराम ठहराया जा रहा है। मैं उनकी सरकशी को हक और इंसाफ से बदल देने का बहुत ज़्यादा हकदार हूँ। इस खुतबे से साफ जाहिर है कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का एहसास था कि यजीद की हुकूमत गैर शरई है और उसमें मुनकरात का दौर दौरा था, फसाद और ख़राबी जाहिर थी जिसे वो दूर करना चाहते थे। यही वजह है कि आपने वहाँ इफ़ाम व तफ़हीम से काम लेने की हर मुमकिन कोशिश की। आपने एहतजाज करते हुए एलाए कलिमतुल हक का फरीज़ा अंजाम दिया। आपने फरमाया, मामले की जो सूरत हो गई है तुम देख रहे हो, दुनिया ने अपना रंग बदल दिया, मुंह फेर लिया, नेकी से खाली हो गई, ज़रा सी तिलछट बाकी है, हकीर सी ज़िंदगी रह गई है, हौलनाकी ने इहाता कर लिया है। अफसोस, तुम देखते हो कि हक पसे पुश डाल दिया गया है, बातिल पर आलानिया अमल हो रहा है, कोई नहीं जो उसका हाथ पकड़े। وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقائے الہی کی خواہش کرے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے.
3: 101 FM.

0: सवेद को सऊदी अरब के किरदार को हराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने सबर का तहमुल का दरगुजर का जो है मुजाहरा किया। उन्होंने हमला नहीं।
1: This is FM 101.

0: GE Power, the ultimate power solution.
1: 101 FM.
2: This is FM 101.
3: Moses Samin, aap sun rahe hain FM 101 Islamabad studios.
2: This is FM 101.
0: Suraj ki kirnein har subah laati hain ek naya umeed e safar. पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE Power से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE Power, the ultimate power solution.
4: हमसे है रोशन ये जहां,
5: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: सुनते रहिए FM 101
2: एक दूसरे को हिदायत करना और बुरे कामों से रोकना करार दिया है। इरशाद इलाही है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरून बिलमारूफ वतनहून अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में से चुनी गई है, जो लोगों को नेक काम करने का हुक्म करती है और बुरे कामों से रोकती है। इस आयत में पूरी उम्मत पर अम्र बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा आयद किया गया है और दूसरी उम्मतों पर उसकी फजीलत का सबब ही इस खास काम को बताया है। दीन की ताईद और हिमायत का ये एक बुनियादी उसूल और ठोस लाए अमल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी इस बारे में वाज़ह है कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि तुम ज़रूर अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहो, वरना फिर मुमकिन है अल्लाह ताला गुनाहगारों के साथ तुम सब पर भी अपना आज़ाब भेज दे। उस वक्त तुम अल्लाह से दुआ मांगोगे तो कबूल न होगी। फिर फरमाया, तुम में से जो शख्स कोई गुनाह का काम होता हुआ देखे तो उसको चाहिए कि अपने हाथ और कुव्वत से उसको रोक दे, और ये भी ना कर सके तो कम अज़ कम दिल में इस फ़ैल को बुरा समझे, और ये ईमान का अदना दर्जा है। इन तमाम आयात व अहादीस से ये बात साबित है कि नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना उम्मत के हर फर्द पर वाजिब है, लेकिन हर शख्स पर उसकी इस्तेआत और कुदरत के मुताबिक ये फरीज़ा आयद होता है। और जिस तरह हर शख्स की इस्तेआत व कुदरत मुख्तलिफ होती है, इसी तरह हर काम की इस्तेआत व कुदरत भी जुदा होती है। अव्वल तो ज़रूरी है कि इस शख्स को मारूफ और मुनकर का पूरी तरह और सही सही इल्म हो, क्योंकि जिस शख्स को ख़ुद ही इल्म ना हो और वो अपने जहन के मुताबिक दूसरों को नेकी का हुक्म करने लगे या बुराई से रोके, तो जाहिर है कि इस्लाह की बजाय फसाद होगा, और हो सकता है कि अपनी नावाकफियत के बायस किसी नेक काम करने से मना करने लगे या किसी बुरे काम करने का हुक्म करने लगे। इसलिए इस फरीजे के आयद होने से पहले उस शख्स पर उसका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, वरना उसका फ़ैल माशरे की इस्लाह के बजाय ख़राबी और फसाद का सबब भी बन सकता है। दूसरी बात यह है कि अम्र बिलमारूफ व नहीं अनिल मुनकर का यह फरीज़ा उस वक्त आयद होता है जबकि वह अपने सामने किसी मुनकर को होता हुआ देखे। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु भी अम्र बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अदा करने के लिए निकले थे, जैसा कि उनके खुतबे से ज़ाहिर होता है जो उन्होंने 6 मुहर्रमुल हराम को ख़ास आम सबको ख़िताब करके इरशाद फरमाया था कि लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो कोई ऐसे हाकिम को देखे जो जुल्म करता है, अल्लाह की कायम की हुई हदें तोड़ता है, अहदो पैमान को तोड़ता है, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है, अल्लाह के बंदों पर गुनाह और सरकशी से हुकूमत करता है, और देखने पर भी न तो अपने अमल से उसकी मुखालफत करता है और न अपने कौल से, तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी को अच्छा ठिकाना नहीं बख्शेगा। देखो, ये लोग शैतान के पैरों बन गए हैं, रहमान से सरकश हो गए हैं, फसाद ज़ाहिर है, हुदूद इलाही मुअत्तल हैं, अल्लाह के हराम को हलाल और हलाल को हराम ठहराया जा रहा है। मैं उनकी सरकशी को हक़ व इंसाफ़ से बदल देने का बहुत ज़्यादा हकदार हूँ। इस खुतबे से साफ जाहिर है कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का एहसास था कि यजीद की हुकूमत गैर शरई है और उसमें मुनकरात का दौर दौरा था, फसाद और ख़राबी जाहिर थी जिसे वो दूर करना चाहते थे। यही वजह है कि आपने वहाँ इफ़ाम व तफ़हीम से काम लेने की हर मुमकिन कोशिश की। आपने एहतजाज करते हुए एलाए कलिमतुल हक का फरीज़ा अंजाम दिया। आपने फरमाया, मामले की जो सूरत हो गई है तुम देख रहे हो, दुनिया ने अपना रंग बदल दिया, मुंह फेर लिया, नेकी से खाली हो गई, ज़रा सी तिलछट बाकी है, हकीर सी ज़िंदगी रह गई है, हौलनाकी ने अहाता कर लिया है। अफसोस, तुम देखते हो कि हक पसे पुश डाल दिया गया है, बातिल पर आलानिया अमल हो रहा है, کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقاء الہی کی خواہش کرے۔ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔
3: 101 FM۔
4: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I.

उस रब नु मनाना औका नहीं, मेरे रब को मनाना तो बहुत आसान है। उसके हुजूर में दो रकात नफिल पेश कर दो, वो मन जाता है।

0: अंदर कोई जंगजू गिरोह नहीं होगा और ये तय कर लिया गया है। यही वजह है कि अमेरिका की भी कुछ शरायत है कि लिबनान के अंदर प्रॉक्सी भी खत्म की जाए, और यही वजह है
1: This is FM 101.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के लाहे अमल के तहत आला सतह के मुज़ाकरात का पहला दौर स्विट्ज़रलैंड में खत्म हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद स्विट्ज़रलैंड की हिमायत और तामीरी तआवुन पर उसका शुक्रिया अदा किया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे और सनअती सरगर्मियों में बेहतरी देखने में आ रही है। और भारत को सिफारती महाज पर मुसलसल मुश्किलात का सामना है, जबकि आलमी सतह पर उसकी तन्हाई और गैर यकीनी तजवीराती सूरतेहाल में इजाफा हो रहा है।
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: दिन के 12 बजे हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद स्विट्ज़रलैंड की हिमायत और तामीरी ताउन पर उसका शुक्रिया अदा किया है। स्विट्ज़रलैंड में लेक लुसर्न सरबराह इजलास के दौरान ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी अमल की सियासी निगरानी के लिए एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के नए मुंतखब अरकान ने आज हलफ उठाया। और खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे और सनअती सरगर्मियों में बेहतरी देखने में आ रही है।
2: This is FM 101. 101 FM. This is FM 101.
3: मौजूद सामिन, आप सुन रहे हैं FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज से मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरियात।
4: ये है FM 101, आपकी समातों के संग। आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरियात।

0: भी बहुत कम हुए हैं, हम खुश हैं।
1: नहीं मियाँ खान से डेरा गाजी खान जा रहे हैं, पहले 1500 किराया देते थे, अब 1200 है। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने।

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर कामयाब अमल दरामद इलाकाई अमनो इस्तेहकाम और आलमी इक्तसादी खुशहाली में मुआविन साबित होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर की बेमिसाल सालसी से तेहरान पराइद पाबंदियों के खात्मे और लबनान जंग बंदी पर अहम पेशरफ्त हुई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के तर्जमान ने इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद को मिलाने वाले कोहाला पुल की बंदिश के हवाले से खबरों को मुस्तरद कर दिया है। और बरतानवी वज़ीर आज़म अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं।
1: This is FM 101.
2: I'm talking unity here. I'm not saying we're better than the rest, or the rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mine or Mine here. This station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we. Going 101.

सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी का अमल आगे बढ़ाने के लिए अपना तामीरी और मुखलिसाना किरदार अदा करता रहेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर की अनथक सालसी की कोशिशों से तेहरान पराइद पाबंदियों के खात्मे और लबनान जंगबंदी पर अहम पेशरफ्त हुई है। कौमी असम्बली के इजलास में मुतालबात ज़र पर बहस जारी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के तर्जुमान ने इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद को मिलाने वाले कोहाला पुल की बंदिश के हवाले से खबरों को मुस्तरद कर दिया है। برطانوی وزیراعظم اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اور کل 3 کے ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔

की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं।

शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रिजवाना महताब से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत होने वाली बातचीत मस्बत माहौल में हुई और इसमें हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। ईरान के वजीर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर की सालसी की अनथक कोशिशों से तेहरान पर पाबंदियां खत्म करने के अलावा लबनान जंग खात्मे में अहम पेशरफ्त हुई है। वजीर मजहबी उमूर ने आज आइंदा साल हज के लिए इंदराज के अमल का बाजाबता आगाज कर दिया है। और कल लीड्स में खवातीन के ICC T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा।

0: This is FM 101.
1: We'll be back after the short commercial break.
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the ultimate power solution.
3: हमसे है रोशन ये जहां,
4: हमसे है

ये मुझसे पूछिए क्या जुस्तजू में लज्जत है, फिजाए दहर में तहलील हो गया हूँ मैं, उड़ा हूँ जब तो फलक पर लिया है दम जाकर, जमीन को तोड़ गया हूँ जो रह गया हूँ मैं, जही है खाक के जर्रों में भी चमक मेरी, रही है खाक के जर्रों में भी चमक मेरी, कभी कभी तो सितारों से मिल गया हूँ मैं, हया तो मौत भी अदनासी कड़ी है मेरी, अजल से लेके अब तक वो सिलसिला हूँ मैं, मुझी को देख ले अब तेरे

बेचारा न मुल्ला है ना जाहिद ना हकीम, अकल कहती है के पी शीरो शकर, इश्क कहता है के पी खूने जिगर, अकल कहती है के माला माल हो, इश्क कहता है के पाए माल हो, अकल कहती है के तख्ते शाहनामे।

ने राह बताई मुझे मैं खाने की, मैंने पूछा था कि है मंजिल मकसूद कहाँ, खिज़र ने

करिश्मे दिखाए जाते हैं, मियां कुछ सदा से करिश्मे दिखाए जाते हैं, अदा शनास भी धोखे में आए जाते हैं, कुछ इस अदा से करिश्मे दिखाए जाते हैं, अदा शनास भी धोखे में आए जाते हैं। ये मैं कदा है तेरा मदरसा नहीं वाइस, यहाँ शराब से इंसान

0: This is FM 101.
1: We'll be back after the short commercial break.
2: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, दी अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन। हमसे है

0: वीरान घाटियाँ, धूप की गर्मी, भूख और प्यास की शिद्दत किसी इंसान के गुजरने का तसव्वुर भी ना था। कोसों दूर तक आबादी का नामो निशान ना था। गर्म हवा के थपेड़े घाटियों में शोर कर रहे थे। बीबी हाजरा के लिए जब ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो करीब ही वाके सफा पहाड़ी पर गईं। बुलंदी से आपने हर तरफ नज़र दौड़ाई कि शायद कोई मुसाफिर नजर आ जाए या कहीं पानी का निशान मिल जाए, मगर निगाहों को मायूसी और महरूमी के सिवा कुछ ना मिला। सफा से उतरकर वो तेज़ी के साथ मरवा की तरफ दौड़ी। जब वहाँ भी महरूमी रही तो फिर मरवा से उतरकर वापस सफा की तरफ आई। दोनों पहाड़ों के दरमियान थोड़ा सा नशेबी हिस्सा तेज़ रफ्तारी से तय करके आप सफा पर फिर एक बार चढ़ गई। इस तरह इस अमल को आपने 60 मरतबा दोहराया। इस दौरान में वो अपने बच्चे को भी देख जाती। बच्चे की हालत बिगड़ रही थी और इस हालत को देखकर आपके गमो अंदोह और कर्ब व मलाल में इजाफा होता जा रहा था। सातवीं मरतबा जब सैयदा हाजरा मरवा पर आई तो आपको एक दिलावेज आवाज सुनाई।
1: से मुहर्रम और हराम की खसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
2: This is FM 101.
3: सामेईन, आप FM 101 से मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

आवाज दे रहा है ये मैदान ए करबला, आवाज दे रहा है ये मैदान ए करबला, कुछ रोज रह गए हैं शिकस्ते यजीद में। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

तक आबाद रहेगा। बर्बाद था यजीद, वो बर्बाद रहेगा। हुसैन तेरे खून की हर एक कतरे से गुलशन मेरे ईमान का आबाद रहेगा। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: दे रहा है ये मैदान कर्बला, आवाज दे रहा है ये मैदान कर्बला, कुछ रोज रह गए हैं शिकस्ते यजीद में। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।
1: फरजंदे पयंबर का मदीने से सफर है, सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है, दरपेश है वो गम के जहां जेरो सबर है, गुल चाक गिरेबां है सबा खाक बसर है, गुल रू सिफते गुंशा कमर बस्ता खड़े हैं, सब एक जगह सूरते गुलदस्ता खड़े हैं, रुखसत के लिए लोग चले आते हैं बाहम, हर कल्ब हजी है तो हर एक चश्म है पूर्णम।
2: I'm talking unity here. I'm not saying we're better than the rest, or the rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to mine or mine here. The station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we. Going 101.
3: PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister says discussions under the Islamabad Memorandum of Understanding were held in a positive atmosphere and yielded encouraging progress. The Iranian president will undertake a state visit to Pakistan tomorrow. The foreign minister of Iran says Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end the Lebanon war, besides lifting restrictions on Tehran. The minister for religious affairs launched the registration process for next year's Hajj today.
0: करबला कहती है इस्लाम का मयार हूं मैं, मेरी खाक पे टपका है अब्बास का लहू, पहले जंगल थी मगर आज से गुलजार हूं मैं, इसीलिए सारी जमीनों की अलमदार हूं मैं।
4: आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: रखा।
1: दिस इज FM 101।
2: एहराम तलक बांध चुके थे शहे अब्रार, जो खुल गया अहमद के नवासे पे ये असरार। हैं काफलाए हाज के हमराह सितमगार, या कत्ल करें तौफ में या कर लें गिरफ्तार। पाया जो तरदुद का महल सरवरे दीने, उम्रे से दिया हज को बदल सरवरे दीने। आमाल में हज के तो ये है हुक्म खुदा का, पिशे को न दो आलम एहराम में ईजा। अल्लाह का वो घर ये मोहम्मद का नवासा, सैयद के सताने को वहां आए थे आदा। घर खोलता एहराम न प्यारा वो नबी का, काबे में गला काटते फर्जंदे अली का। मुस्तिर थे शबे हश्त में जिलहज को शिब्बीर, था कस्त मुसम्मम के सुए कूफा हों राहगीर। करते थे कभी याद से रो रो के ये तकरीर, अब यहां से कहां देखिए ले जाती है तकदीर। फिर कर जो वतन जाएं तो जाना ना मिलेगा, अब हमको बजुस कब्र ठिकाना ना मिलेगा। थे सिप्त नबी कूच की तदबीर में उस रात, की आके जो इब्ने हनफिया ने मुलाकात। भाई से बगल गिर हुए शाहे खुश औकात, की अर्ज मोहम्मद ने के ए क़िबलाए हाजात। कूफा की तरफ जाने में अंदेश आए जहां है, मक्का में मकी हो के बुजुर्गों का मकां है। हैदर है न जहरा न हसन है न पयंबर, तुम चार बुजुर्गों की निशानी हो बरादर। हजरत ही के रहने से मदीना है मुनव्वर, सुन सुन के फरोग आपका जलते हैं सितमगर। इस शम्मा को भी गुल न करे मुझको ये गम है, अब पंचतने पाक में हजरत ही कदम है। हजरत ने कहा होता हूं नाचार रवाना, भाता है किसे अपना वतन छोड़ के जाना। मैं बेकसो मजलूम हूं दुश्मन है जमाना, अब तो है मदीना में न मक्का में ठिकाना। हासिद है कोई दर पे आजार है कोई, हामी है कोई और न मददगार है कोई। करता न सफर गर मुझे कोई न सताता, बाहिर कभी रोजा से मोहम्मद के न जाता। मैं क्या करूं भाई मुझे कुछ बन नहीं पड़ता, मरकत से बुजुर्गों के मुकद्दर है छुड़ाता। बेदीनों को जीना मेरा मंजूर नहीं है, हो जाऊं यहीं कत्ल तो कुछ दूर नहीं है। इस अम्र का दर पे है यजीद सितम ईजाद, बाकी रहे दुनिया में मोहम्मद की न औलाद। डरता हूं यहां कत्ल करेंगे मुझे जल्लाद, हुरमत हरमे काबा की हो जाएगी बर्बाद। काबा से मैं निकलूं ये गवारा मुझे कब है, नाचार हूं दूरी का सबब पासे अदब है। इब्ने हनफिया ने कहा तब ये बसमाजत, गर जाइए तो सूए यमन जाइए हजरत, वहां आपके वालिद के हैं शियों की सकूनत। वो लोग हैं सब अहले वफा अहले मुरव्वत, कीजिएगा सरफराज तो कदमों पे गिरेंगे, फिर जाए जमाना वो ना हजरत से फिरेंगे। बिलफर्ज यमन में भी जो आराम ना पाए, शहरों से किनारा करें जंगल को बसाएं, तकलीफ बयाबा में सहें रंज उठाएं, पर बहरे खुदा कूफा की सरहद में न जाएं। बच्चों पे करें रहम के छोटे अभी सिन है, इस राह में कम पानी है और गर्मी के दिन है। फरमाया जहां जाऊं करूं कसद जिधर का, छोड़ेगी अजल साथ न जहरा के पिसर का। अब ध्यान है शब्बीर को बच्चों का ना घर का, अब का ये सफर मुझको वसीला है जफर का। गरकूद सुए कूफा ना होएगा बरादर, फिर कौन मेरी कब्र में सोएगा बरादर। चढ़ने लगे रहवार पे जब सिप्ते पयंबर, फरियाद सुए काबा ये की हाथ उठाकर। छुटता हूं तेरे घर से मैं ऐ खालिक़े अकबर, इस साल हुआ हज भी ना खादिम को मयसर। पासान के दर से जो तेरे दूर चला हूं, तू आलिमो दाना है कि मजबूर चला हूं। बच्चे मेरे हमराह हैं गर्मी का सफर है, रास्ता भी खतरनाक है मंजिल पे भी डर है। پر فضل و کرم پر تیرے بندے کی نظر ہے، ناگاہ

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। खबरों का खुलासा, वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत होने वाली बातचीत मुस्बत माहौल में हुई और उसमें हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। ईरान के सदर कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर मज़हबी अमूर ने आज आइंदा साल हज के लिए अंदराज के अमल का आगाज कर दिया।
1: अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशरियात।

गोद में ले लो बाबा सीने से सकीना को लगाते जाए। अब कहाँ होगी मुलाकात

लाश पर भाई के पहुंची तो कफन याद आया, बहन गरीब है भैया कफन भी ला ना सकी।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत होने वाली बातचीत मुस्बत माहौल में हुई और इसमें हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। ईरान के सदर कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर मज़हबी अमूर ने आज आइंदा साल हज के लिए अंदराज के अमल का आगाज कर दिया। ख़वातीन के ICC T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल लीड्स में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा।
1: सामीन, आप FM 101 से मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।
2: हुसैन अपना जिक्र है, हुसैन ही कलाम है। हुसैन अपना जिक्र है, हुसैन ही कलाम है। हुसैन सुबह नूर है, हुसैन अपनी शाम है। हुसैन अपनी शाम है, हुसैन दीनो ईमान, हुसैन हुर्फ़े कुरान। उताए दीन पे जो जान, हुसैन ही का नाम है। नबी का लाडला है जो फातिमा की जान है। अली का शेर है वही जो मेरा इमाम है। अली का शेर है वही जो मेरा इमाम है।

आफत में गिरफ्तार हैं नामूस मोहम्मद, मजबूर हैं नाचार हैं नामूस मोहम्मद, सरवर के आजादार हैं नामूस मोहम्मद, और जीने से बेजार हैं नामूस मोहम्मद। जिंदा की सऊबत है गरीबुल वतनी है, कुल्हाए हुसैना का है और सीना सनी है। अकबर की जवानी का किसी बीबी को गम है, असगर के लिए चश्म किसी बीबी की नम है, अब्बास की फुरकत का किसी दिल पे अलम है, दुल्हा को कोई रोती है सर जानू पे खम है, करती है कोई याद मोहम्मद के पिसर को, दीवार से रोकर कोई टकराती है सर को, कहती है कोई लूटा गया बाग हमारा, हाय हाय मेरे बच्चे को सितमगारों ने मारा, मुझ बीबी का पीरी में रहा कुछ ना सहारा, दुनिया से मेरा लाल जवां हो के सिधारा, शादी भी हुई थी ना मेरे लख्त जिगर की, मैं मर ना गई हाय बला लेके पिसर की, हर शाम सहर शोर ये था हाय हुसैना, अब तक न कफन तुमको मिला हाय हुसैना, काटा तेरा जालिम ने गला हाय हुसैना, कुंबा तेरा आफत में फंसा हाय हुसैना, तुम छुट गए कटवा के गला रंजो अलम से, अब कौन छुड़ावेगा हमें कैद उस सितम से, इस कैद में था वाली सकीना को ना आराम, सर पीटती थी हाथों से रोकर सहरो शाम, सब भूली थी बाबा का ही बस याद था एक नाम, कहती थी कि अम्मा नहीं जीने की मैं नाकाम, पाऊंगी कहां फातमा जहरा के पिसर को, हैं ढूंढती आंखें मेरी मजलूम पिदर को, मुंह चूम के बहलाती थी माँ ऐ मेरी प्यारी, अब आएगी यहां बीबी के बाबा की सवारी, आओ करो आराम मेरी गोद में वारी, रुदात सुनी है शहे वाला ने तुम्हारी, छाती से हुसैन आके लगामेंगे मेरी जान, अब्बास अली पानी पिलामेंगे मेरी जान, वो कहती ना सोऊंगी अगर नींद भी आए, है कौन जो छाती पे सकीना को सुलाए, हाल अपना किसे आह ये मजलूम सुनाए, बाबा नहीं जानू पे मुझे कौन बिठाए, सीना मेरा अब दर्द यतीमी से तपा है, बिछड़ी हूं पिदर से मुझे आराम कहाँ है, याद आता है बाबा का वो छाती पे सुलाना, वो प्यार की बातें वो मेरा नाज उठाना, वो पीठ पे शफकत से मेरे हाथ फिराना, और प्यार से हर वक्त वो मुंह चूमते जाना, ता हश्र बस अब शाद ना होएगी सकीना, चैन आएगा जब कब्र में सोएगी सकीना, ये नील तमाचों के किसे आह दिखाऊं, कानों के मैं दुख का किसे अहवाल सुनाऊं, अब्बास चचा को भला किस तरह से पाऊं, अकबर हैं कहां जिनको हिमायत में बुलाऊं, डर शिम्र का ये है कि मैं चिल्ला नहीं सकती, वो आ नहीं सकते मैं वहां जा नहीं सकती, माँ ने कहा कुर्बान तेरे ऐ बेकसो बे पर, अब रोने की ताकत नहीं है चुप रहो दम भर, सुन लेवेगा रोना तेरा घर शिमरे बदख्तर, बेरहम है सितमगर, दुश्मन तेरी आवाज का वो दुश्मन दी है, हम बेकसो मजबूर हैं कुछ जोर नहीं है, वो कहती थी सीने में तड़पता है मेरा दिल, मर जाऊं तो आसान हो अम्मा मेरी मुश्किल, इस दुख की मैं अब हो नहीं सकती मुतहम्मिल, राजी हूं मुझे तैग से कोई करे बिस्मिल, बाबा की जुदाई ने ये बेताब किया है, कानों का भी अब दर्द मुझे भूल गया है, गश हो गई बस इतने में वो बेकसो पुरगम, हर बीबी को बस हो गया एक सकते का आलम, बानों ने कहा हाय मैं अब क्या करूं इस दम, हाथों से चली शेफताए सैयद अकरम, जानो जिगरे शाह मदीना को गश आया, फरियाद है सकीना को गश आया।
यहाँ हाय सकीना का हुआ शोर जो एक बार, तब ख्वाब से हाकिम भी महल में हुआ बेदार। मंगवाई खबर जब तो किसी ने किया इजहार, एक चार बरस की जो है शब्बीर की दिलदार। याद उसको नहीं शह की फरामोश हुई है, बाबा को ये रोई है कि बेहोश हुई है। हल्का किए गिर्द इसके हरम रोते हैं बाहम, कोहराम है जिंदा में कयामत का है आलम। बोला ये खबरदारों से उस वक्त वो असलम, पहुंचाओ खराबे में सरे सैयद अकरम। बेताब है मिल ले शह मजलूम के सर से, महरूम न रह जाए वो दीदारे पेदर से। जिस तश्त तलाई में रखा था सरे सरवर, खुद्दाम रवाना हुए जल्दी उसे लेकर। जाकर दरे जिंदा पे पुकारे वो बदख्तर, ले जाओ कोई आके सरे सैयद बेसर। खुशबू इसे शब्बीर की जुल्फों की सुंघा दो, सरबाब का मजलूम सकीना को दिखा दो। रोते दरे जिंदा पे गए सैयद सज्जाद, सरबाब का हाथों में लिया बादिल नाशाद। जिंदा में चले करते हुए नाला ओ फरियाद, जा पहुंचे तो बीबी से कहा रोके ये इरशाद। शब्बीर का सर आया है ताजीम को उठो, जहरा के जिगर बंद की तस्लीम को उठो। सर पीटी ये सुनते ही सभी बीबियां बाहम, जैनब ने कहा करती है तस्लीम ये पुरगम। हाथों पे लिया फिर सरे सरदार दो आलम, सर पीट के सब बीबियां करने लगी मातम। सर हाथों पे भाई का बहन के जो धरा था, एक नूर खुदा चार तरफ जलवा नुमा था। बाली पे सकीना के सरे शाह जो लाई, बूगे सुए सरवर की सकीना को सुंघाई। बाबा की जो बू दुख्तरे मजलूम ने पाई, कुछ कष्ट से अफाका हुआ और होश में आई। आहिस्ता कहा रूह मजा पाती है लोगो, बू बाबा की जुल्फों की चली आती है लोगो। फिर थाम के शाने उसे बानों ने उठाया, जैनब ने कहा आई। आहिस्ता कहा रूह मजा पाती है लोगो, बू बाबा की जुल्फों की चली आती है लोगो। फिर थाम के शाने उसे बानों

0: रहा है कि जुम्बिश में तब आए लबे अथर, हजरत ने भी इजाज से चूमे लबे दुख्तर। वाह हो गई आंखें शहे मजलूम के सर की, बेटी पे अजब यास से हजरत ने नजर की। बेटी ने कहा, सदके मैं इस प्यार के बाबा, ये किसने गला आपका तलवार से काटा? सर तो है यहाँ और तने पुर नूर है किस जा, वो बाजू कहाँ है जो मेरे होते थे तकिया? अब मुंह से निकलता है कलेजा मेरा फट कर, वो छाती कहाँ जिससे मैं सोती थी लिपट कर? इस सिन में कहूँ क्या जो सितम मैंने उठाए, या शाह तमाचे मुझे जालिम ने लगाए? बुंदे मेरे छीने मुझे नेजे भी दिखाए, बांधे हुए गर्दन में रसन खींचते लाए। न पास हैं आप और न चचा जान हमारे, फरियाद के मजरूह हुए कान हमारे। इतने में कहा शिमर सितमगर ने ये आकर, ले जाओ बस अब जल्दी सरे सिप्त पयंबर, हाकिम का मुझे हुक्म ये पहुंचा है मुकर्रर, दम भर से ज्यादा न रहे यहां सरे सरवर। रोती है तो दिखला दो जरा शक्ले पिदर को, बहली हो सकीना तो हवाले करो सर को। नादा ने सुनी शिमर की आवाज जो एक बार, तन कांप गया सहम गई वो जिगर अफकार। बानों से लिपट कर कहा, ऐ मादरे गमखार, जान अपनी मैं दूंगी पर ये सर दूंगी ना जिनहार। कुर्ते में छुपा लेती हूँ इस खून भरे सर को, देखा नहीं जी भर के अभी अपने पिदर को। सुन लो ये वसीयत मेरी तुम सब के मैं कुर्बान, तुम भी ना उसे दीजियो सरे सरवरे जीशां, झुंझला के मुझे कत्ल करे ये बदीमा, सर बाप का रख दीजियो मेरी कब्र में अम्मा। होगा ना कलक रूह मेरी शाद रहेगी, वल्लाह मेरी गोर भी आबाद रहेगी। ड्योड़ी से सकीना की सुनी शिमर ने तकरीर, जिंदा में गया ची बजबी दस्ते बशमशीर, थर्राए हरम सहम गई दुख्तरे शब्बीर। फरमाने लगे उससे ये तब आबिदे दिलगीर, इस जुल्म रसीदा को ना आजार दे बस कर, मासूम सकीना की यतीमी पे तरस कर। जालिम ने बजोर उससे सरे शाह को छीना, और ले गया जिंदा से सरे शाह मदीना। बीबियां तो लगी पीटने रोकर सरो सीना, और मर गई बस हाय बिदर कह के सकीना। एक धूम हुई खाना ए जिंदा में बुका की, था शोर के शब्बीर की आशिक ने कजा की। माँ बोली के बच्ची तेरी सूरत के मैं सदके, हाय हाय मेरी प्यारी तू जुदा हो गई मुझसे। माँ छोटी सी मैयत तेरी किन आंखों से देखे, आखिर हुई बीबी ना उठाए गए सदमे। मादिर तेरी मजलूमी के कुर्बान सकीना, मासूम सकीना मेरी नादान सकीना। सदके गई अब रोती नहीं शिमर के डर से, कहती नहीं अम्मा मुझे मिलवा दो पिदर से। घर दादी के तुम आज चली हो मेरे घर से, मुंह मोड़ गई मादरे तुफ्तीदा जिगर से। मैं रोती हूं बेदार नहीं होती हो बीबी, छाती पे धरे हाथ पौड़ी सोती हो बीबी। फिर रख के मुंह उस बच्ची के मुंह पे ये पुकारी, असगर की तरह छोड़ गई तुम हमें वारी। बीबी मैं नहीं जीने की फुरकत में तुम्हारी, हाय हाय मेरी आशिक मेरी बेकस मेरी प्यारी। महादिर से बुरे वक्त में मुंह मोड़ गई तुम, इस कैद में रोने के लिए छोड़ गई तुम। नन्ही सी कहां कब्र बनाऊं मैं तुम्हारी, चादर भी नहीं जिसका कफन दूं तुम्हें वारी। परदेश में की तूने कजा है मेरी प्यारी, क्या आखिरी खिदमत करे मां दर्द की मारी। पोशीदा तहे खाक जो तन होगा तुम्हारा, ये खून भरा कुर्ता ही कफन होगा तुम्हारा।
1: तारीख मिसाल ऐसी कोई ढूंढ के लाए, सर तन से जुदा भी हो मगर मौत ना आए। सोचूं मैं सब्रो रजा के जो माई ने, एक नाम हुसैन इब्ने अली,

0: से हो कश आ जाएगा वारी।
1: पाकिस्तान ने हमेशा पायदार और कुरान
0: कब्जे में है मौला के यदुल्लाह की शमशीर पर सब्र के जौहर उन्हें दिखलाते हैं शब्बीर। हर जख्म पे है शुक्र हर एक तीर पे तकबीर। फरमाते हैं राजी हूं मैं ऐ मालिके तकदीर। खाने की न पानी की न राहत की तलब है या रब मुझे उम्मत की शफाअत की तलब है। ये कहते थे हजरत के बड़े बर्चियों वाले और आए पसे पुश्त सवारों के रसाले। दाहने को प्यादे गए तलवारें निकाले। सहरा के जिगर बंद पे चलने लगे भाले। उल्था के करो टुकड़े मोहम्मद के जिगर को। घोड़े पे संभलने न दो जहरा के पिसर को। नागाह गिरे गर्म जमी पे शहे अबरार। आसार कयामत के हुए रन में नमूदार। और हाय पे कत्ल बढ़ा शिमरे सितमगार। गर्दन पे नमाजी के फिरा खंजरे खूंखार। फर्जंद जबरदस्त यदुल्लाह को मारा। शब्बीर को क्या अहमद जीजा को मारा।
2: करबला कहती है इस्लाम का मयार हूं मैं। मेरी खाक पे टपका है अब्बास का लहू। पहले जंगल थी मगर आज से गुलजार हूं मैं। इसीलिए सारी जमीनों की अलमदार हूं मैं। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

है कर चुका है दिल में उजाला हुसैन का घर कर चुका है दिल में उजाला हुसैन का।

जहरा का जमन वीरा है, ऐ चांद मुहर्रम तू ही बता, खातून का चांद कहाँ है।

जिंदा है ऐ चांद मुहर्रम तू ही पता, खातून का चांद कहाँ है, आबाद है दुनिया सारी, आबाद है दुनिया सारी, जहरा का चमन पीरा है, ऐ चांद मुहर्रम तू।

0: गोद में ले लो बाबा,
1: नामे हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा। बर्बाद था यजीद, वो बर्बाद रहेगा। हुसैन तेरे खून के हर एक कतरे से, गुलशन मेरे ईमान का आबाद रहेगा। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

लाश पर भाई के पहुंची तो कफन याद आया, बहन गरीब है भैया कफन भी ला ना सकी, बहन गरीब है भैया कफन भी ला ना सकी, बहन गरीब है भैया कफन भी ला ना सकी।

बहन गरीब है भैया, कफन भी ला ना सकी। बहन गरीब है भैया, कफन भी ला ना सकी।

सकी बहन गरीब है भैया कफन बिला न सकी बहन गरीब है भैया कफन बिला न सकी जलाया आग ने दामन को इस तरह भैया जलाया

0: जिस दिन से लिख रहा हूँ मैं
1: नामे हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा। बर्बाद था यजीद, वो बर्बाद रहेगा। हुसैन तेरे खून के हर एक कतरे से गुलशन मेरे ईमान का आबाद रहेगा। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।
0: दुआ तो मांग असर भी।

0: जो गंवार पीछे रह गए थे उनसे कह दो कि तुम जल्द एक सख्त जंगजू कौम के साथ लड़ाई के लिए बुलाए जाओगे। उनसे तुम या तो जंग करते रहोगे या वो इस्लाम ले आएंगे। अगर तुम हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुमको अच्छा बदला देगा, और अगर मुंह फेर लोगे जैसे पहली दफा फेरा था तो वो तुमको बुरी तकलीफ की सजा देगा।
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج